जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हम काले हैं

जम तारी।

छेने हटूंगा वही मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुट्टी को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह

0: गारे गारे
1: गारा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये अम्मा को बटका
0: गारे
1: दिया।
0: गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तो ये कचतुर नार अम्मा।

0: घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर एक पैर है ना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती।

माला देवी, माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बरसों बाद ढूंढने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: लगेगा।
1: देखो जिधर मैं शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
2: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
3: विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
4: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
1: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
2: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
5: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
2: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है। और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ? पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: करो ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ ज्यादा आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

0: मैं रत्ना
1: रत्ना रत्ना

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gana. Thank you.

0: आएगो आएगो आएगो।
1: ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है। क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो
1: ये क्या हो गया।
2: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
2: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो।

0: देना।
1: हे हे हे, अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा आ गया।
2: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
1: अरे हाय देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
0: गोविंदा,
1: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
0: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
1: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
1: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
0: गोविंदा,
1: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
0: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई मगर रात को ये धंधा
1: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
0: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
1: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहा कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बेटी कहाँ से ले दूँ।
1: नंगे पाँव मेरे कोई चूत नहीं है, इधर तो देखो दादी मेरी तत नहीं है, सुबह से मुझको

चकाचक हिरलो पान चबा।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड। यस ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा ओल्ड वाले जो गाने होते हैं ना एकदम यानी प्योर गोल्ड होते हैं यानी 24 कैरेट गोल्ड। ओके तो उन्हीं में से एक मेरी पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम कर रहे हैं।

बिल्कुल ताई दिन तंदाना। वैसे सभी का वेलकम वेलकम वेलकम है और बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफराज भाई, सरफू भाई ये साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, मुरादाबाद यूपी से। और जुड़ने वाले दोस्तों में मुबारक हुसैन जी भाई, मुबारक हो आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वेश भगत जी। आत्माराम पाटिल जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। अशोक देशमुख जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और सुनीता गोप जी आपका भी वेलकम है। और आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आरिफ सिंधी जी, वालेकुम सलाम। और जुड़ने वाले दोस्तों में यानी विष्णु चंद्र जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है विष्णु चंद्र जी। और जुड़ चुके हैं संध्या पटेल जी, बहुत दिन बाद जुड़ी हैं, बहुत बहुत वेलकम है दीदी आपका, और कहाँ थी इतने दिनों तक। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दीपक कुमार गायकवाड़ जी। और संदीप सुतार जी जुड़ चुके हैं, नमस्ते वेलकम है आपका भी। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं जाकिर खान जी आपका। और नाम है इनका लाखन मलाकार, बहुत बहुत वेलकम है लाखन मलाकार जी। और मीना इब्राहिम जी यूएस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और सरोजी सेठी जी वेलकम करते हैं आपका भी। और रणवीर, अच्छा इनका तो हो गया फिलहाल, चलिए तो सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं। आज का पहला जो मैं गाना प्ले करने जा रहा हूँ वो है हमारे किस दोस्त का, वो है सोनू गौतम जी का। सोनू गौतम जी सुनवा रहा हूँ आपके पसंद का ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है अजय भगत जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अजय अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। सोनू गौतम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और दिलीप कुमार कोलकाता से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दिलीप कुमार जी। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, रास्ते में जो खड़ा था। और नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है नीतू जी आपका। और लिखते हैं कि शानदार शुरुआत हुआ है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि मैं तो अपने मायके गई थी। अच्छा, हम तो यही कहेंगे तू मायके मत जाइयो मेरी जान। वैसे गाना लिखते हैं कि बहुत ही मस्त चल रहा है उसे। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी राधा कृष्ण गोप जी। आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं सुनवाने के लिए। और ये फीडबैक,
2: वैसे तो मैं ना लेती अंगूठी फेंक देती पर अच्छा। उसमें हीरा जड़ा था, कब से मेरे पीछे पड़ा था पर उसमें हीरा जड़ा था, कब से मेरे पीछे पड़ा था, अरे रस्ते में वो खड़ा था
0: अच्छा।
2: कब से मेरे पीछे पड़ा था, जोश बड़ा उसको चढ़ा था
0: अच्छा जी।
2: वो अपनी जिद पे अड़ा था, कब से मेरे पीछे पड़ा था।
0: तो
2: ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा था और शुक्रिया अमन जी ये सॉन्ग सुनाने के लिए, बिकॉज ये श्रीदेवी का सॉन्ग है, थैंक।
0: अच्छा जी, ओके। और एमडी फैजान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का है, सुनना चाहते हैं 18 बरस की। और बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड गाने की डिमांड, 1960 से लेकर 1989 तक के गाने की डिमांड अभी कर सकते हैं लाइव शो में। और रेडियो हॉटस्टार के वो जो यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट का ऑप्शन है उसके जरिए करना है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। सोनू गौतम जी लिखते हैं, थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। शिल्पा बहन लिखते हैं कि हेलो अमन जी, हम भी जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। शिल्पा बहन जी और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, उनको तो सुनना पड़ेगा।
1: अरजय अमन सर जी, सरजीत सेट्टी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और रणवीर सिंह जठरा लिखते हैं कि गाना मुझे सुहाग का बहुत ही अच्छा लगा है, ओके जी। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं, बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो ये, यानी प्रियंका जी का, और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं, चढ़ती जवानी इनकी चाल में।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हुए मेरे पास और यहाँ पे का जन सुनकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं, सभी को नमस्कार कह रहे हैं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है। और यहाँ अशोक कुमार जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ चुका हूँ पटना बिहार से, बहुत बहुत वेलकम है। और सुहाग का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और कार्यम और फिल्म यानी कारवा का भी गाना मुझे सुपर हिट लगा है, धन्यवाद देते हैं। और आरिफ सिंह जी लिखते हैं ये प्रियंका जी के पसंद, वेरी नाइस, ओके जी। और आत्माराम जी क्या कहते हैं,
1: भाई गौतम जी का गीत अमन सर बहुत ही टॉप पर रहा, शुक्रिया उनको। मैं आत्माराम पाटिल और आज के प्रोग्राम में ओल्ड इज गोल्ड सभी गाने अच्छे रहेंगे सर
0: जी। बिल्कुल मुझे पता है आज के सभी गाने बहुत अच्छे लगेंगे। और एमडी फैजान लिखते हैं वाओ सुपर्ब ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग सुनने को मिला। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर गाना चलवाने के लिए इन प्रियंका जी को हम धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही लाजवाब डिमांड के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका। और शाहनवाज खान जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी सुपरहिट सॉन्ग के लिए शुक्रिया, ओके जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। महेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है महेश जी। अम्बेडकर ये लिखते हैं कि मैं महेश भाई अहमदनगर ये महाराष्ट्र से हूँ और शो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, तो आपका कौन सा गाना है तो उधर भेज दीजिए सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, मैं कोशिश करूँगा आपके गाने को प्ले करने के लिए, ओके। सोनू गौतम जी लिखते हैं ये प्रियंका जी की पसंद बहुत ही लाजवाब है, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी उनकी पसंद अभी अपने आप में बेमिसाल है, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए, थैंक यू सो मच आपका भी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी ये प्रियंका जी के पसंद लाजवाब। और सर्वजीत सेठी जी का
2: धन्यवाद, अमन सर जी आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है, तो सुनते रहिए हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से,
0: ओके जी। और यहाँ पर रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, ओके। और अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने जा रहा हूँ राहुल पासी जी का, भाई इनको शिकायत है मतलब कि तेरा नाम लिया।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। सर्विस भगत जी क्या कहते हैं, पहले इनके सुनते हैं।
1: आरके अमन सर जी, राहुल पासी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मनीषा शर्मा जी लिखते हैं वेरी वेरी नाइस सॉन्ग। और प्रियंका जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: हाय दुनिया हुई रे मेरे प्यार में दीवाने,
0: अच्छा?
2: लाखों की मैं दिल जाने रामा,
0: अच्छा ये बात है।
2: चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तान,
0: ओ माय गॉड, हमको तो मालूम नहीं है।

0: छो।
1: थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजान सरकार जी देखते हैं कि प्रियंका जी और राहुल पासी जी दोनों की डिमांड बहुत ही शानदार लगी, दोनों को धन्यवाद देते हैं। और संदीप पटेल जी देखते हैं कि नाइस चॉइस, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। आत्माराम जी लिखते हैं कि इतने प्यारे गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि मोहड़े जी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि मुझे तुमसे कितने गिले, गाना बहुत ही लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1989 के पैदान नंबर 10 पर बया था सर ये सुरीली आवाज़ अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास का है, और आनंद बख्शी के बोल और शब्दों को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो अनिशा सिंधी जी का सुनवाना, ये सुनना चाहती हैं दे दे प्यार दे किशोर कुमार।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। पहला तो सर्विस नगर जी का,
1: अरजय अमन सर जी, अनिशा सिंधे जी अपने गाने में शामिल किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे प्रियंका जी क्या कहती हैं?
2: पिक्चर के टिकट मंगवाई, नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छी खबर तुम लाए, नहीं नहीं नहीं, किसी काम मेरी तुम आए, क्या प्यार ये तुमने किया, क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तूने मेरी कदर कुछ जानी, कभी दी कोई प्रेम निशानी, कभी बात मेरी तुमने मानी। सॉन्ग तो बहुत बड़ा है, बट ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, थैंक यू।
0: ओके जी, तो लेकिन आप थोड़ा सा गाना को कम गुनगुनाया कीजिए ना, तो अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पे आरिफ सुनने के लिए कि बहुत बहुत ही प्यारी पसंद सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिशा जी आपका। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1984 के पैदान नंबर 6 पे गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने अलग अलग वर्जन में गाया था, अनजान के बोल और बकपी लहरी के संगीत। जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस जानकारी के लिए आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे संध्या पटेल जी, ओ ऑसम सॉन्ग है जी बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि दे दे प्यार दे, बहुत लाजवाब गाना है, मजा आ गया। और पसंद करने वाले अनिशा सिंधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत वेलकम है। और आज आपका गाना सबसे लास्ट में प्ले होगा 100%, भले किसी का प्ले हो चाहे ना हो, लेकिन आपका 100% मैं अभी लिख के देता हूँ कि सबसे आखिरी गाना आज आपका होगा। ओके, क्योंकि गाना ही आपने ऐसा भेजा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, और नरेंद्र एन मिश्रा जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ चुका हूँ और गाना और शानदार शानदार यह प्रोग्राम चल रहा है, धन्यवाद देते हैं सभी को। रामकेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका रामकेश जी। और लिखते हैं ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, दे दे प्यार दे। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं आगरा वाले, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है। रणवीर सिंह जेठला लिखते हैं कि दे दे प्यार दे, गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। अगला डिमांड में लेगा अजय भगत जी का, सुनना चाहते हैं कि चल सन्यासी मंदिर में, तो ले चलते हैं, सुनवाते हैं गाना।

0: रखेगी अब तू पागल। मेरा धीरज डोल रहा है लाज रखे गंगा जल।
1: चल सन्यासी।
2: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे, और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि चल सन्यासी मंदिर में एक से बढ़कर एक गाने लाजवाब प्ले हो रहे हैं, मजा आ रहा है सुन के। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि चल सन्यासी मंदिर में, और पिछले हफ्ते के गाने हफ्तों से कंटिन्यू ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम में भजन, और आज तो हैट्रिक हो गया, लाजवाब फरमाइश सभी दोस्तों को। और राम के जी लिखते हैं कि अजय जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: आरजे अमा सर जी, अजय भगत जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
2: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे अजय भगत जी लिखते हैं कि थैंक यू सर जी गाना प्ले करने के लिए। और रणवीर सिंह जी जेठाला लिखते हैं कि ऐसी बात नहीं, देखिए आप लोग इस तरह से मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं सभी का मैसेज पढ़ता हूँ, वो चाहे एक लाइन में पढ़ूँ चाहे आपका इन पूरा मैसेज पढ़ूँ। अब एक ही चीज़ को बार बार इन लिखेगा, मैं उसको अपने हिसाब से पढ़ूंगा ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हर बार अलग अलग मुझे लिखिएगा, मैं हर बार मैं अलग अलग आपके मैसेज को पढ़ लूँगा, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि 1976 के पैदान नंबर 5 पर बजने वाला इस गीत को मुकेश जी के साथ लता मंगेशकर जी ने गाया था, और विश्वेश्वर शर्मा के बोल को संगीत दिया था शंकर जय किशन ने। जी बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना सच में बहुत ही सुपरहिट लाजवाब था। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। आत्माराम जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
4: लता मंगेशकर और मुकेश चंद्र माथुर जी ने गाया हुआ मुझी सन्यासी का गीत बहुत ही सुपर डुपर चल सन्यासी मंदिर में, शुक्रिया फरमाइश करता हूँ मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
2: ओके जी, और अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा राधा कृष्ण गोप जी का, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। एंजॉय कीजिए
5: लेटेस्ट अपडेट।

बिल्कुल, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। वैसे फिलहाल राम के जी लेते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी के वचन मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और राधा कृष्ण गोप जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। शर्मा जी लेते हैं कि हम तुम्हारे लिए गाना बहुत लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। अजय भगत जी लेते हैं कि सभी दोस्तों की ओर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए, गाना पसंद करने के लिए। आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही ये यानी कि प्यारी डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। अब्दुल जब्बार अंसारी जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम शानदार लग रहा है। और जागृत जी लिखते हैं कि हम तुम्हारे लिए गाना सच में बहुत ही प्यारा है। अगला जो डिमांड है वो रश्मि जी का है, और रश्मि जी ये सुनना चाहती है, बहुत ही प्यारा गाना है, यानी कि करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से।

0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे लिखते हैं संजय पटेल जी के सुपर सुपर सुपर से ऊपर वाला सॉन्ग है। राधा कृष्ण को भी देते हैं शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रश्मि जी को अशोक कुमार लिखते हैं कि 1987 के पैदान नंबर 11 पर आया था किशोर कुमार कविता की मूर्ति की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। नंदनी मां लिखते हैं कि बाबू बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत थैंक यू माँ जी, आपका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है मुझे। और लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गाने बज रहे हैं। जागृत जी लिखते हैं कि मोगैम्बो खुश हुआ, गाना सुनकर मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और अजय भगत जी लिखते हैं कि करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से धन्यवाद। अगला जो डिमांड है हमारे हुकुमचंद जागृत जी का है, सुनना चाहते हैं खाई के पान बनारस वाला। ओहो हो क्या बात है, इंजॉय कीजिए।
1: सा झटका ला।

0: मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं?
2: आरजे अमन सर जी हुकुम चंद जांगर जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल थे, सभी को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और हुकुम चंद जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं हुकुम चंद जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया उनको। राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत लाजवाब डिमांड है, चल रहा है हुकुम जी का। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1978 के पैदान नंबर 4 और 1979 के यानी चोटी यानी एक नंबर पे बया था ये गीत। और ये किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल और कल्याण जी आनंद जी के सुपरहिट संगीत। अगला जो डिमांड है वो संध्या पटेल जी का है, सुनना चाहती है मिलो ना तुम तो हम घबराएं ही रंझा का ये लाजवाब गाना।

हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अरे गजानंद जी कहते हैं कि ये संध्या पटेल जी के गाना सच में दिल को छू गया है। और नंदनी वाली कहते हैं कि सुपर सुपर सुपर हिट गाना है ये, मजा आ गया सुन के। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि डॉन का गाना सुपर हिट, खाई के पान बना था। और इसके बाद से रियल ओल्ड इज गोल्ड, 24 कैरेट ओल्ड इज गोल्ड फिल्म, हीर रांझा से लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर भी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, हमें क्या हो गया है, बहुत ही सभी गाने आज एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। और मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है। और लिखते हैं कि हीर रांझा फिल्म में गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगला जो डिमांड है वो है नीतू शरण जी का, सुनना चाहती हैं ये प्यारा सा नगमा, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। आरती तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि तू ख्वाब तू हकीकत है मेरी, लिखते हैं कि तू ख्वाब तू हकीकत है मेरी, और तू शाम तू सुबह है मेरी, और तू ही में बसा है, और तुझसे बढ़कर मैं कैसे चाहूँ, और तू तो जान है और जिंदगी है मेरी, और तू मोहब्बत है तू आरजू है मेरी। वाह वाह क्या बात है। और अशोक पटेल जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि यानी प्यार कर लिया है तो प्यार कोई खतरा में नहीं, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है जितेंद्र जी आपका भी। और प्रियंका जी क्या कहती है, इनकी सुन लेते हैं प्रियंका जी का।
1: रूठे कभी कभी मान गए,
0: अच्छा
1: घाते

0: हम तो कभी नहीं बनेंगे।
1: हमें क्या हो गया है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है।
0: और अगला जो डिमांड है, थैंक यू, अगला जो डिमांड है हमारे जाकिर खान जी का है।

0: वेलकम बैक। और जुड़ चुके हमसे नाम है उनका नन्हे लाल गुप्ता जी। बहुत बहुत वेलकम है नन्हे लाल गुप्ता जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरजे अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे शिल्पा बहन लिखते हैं इतना वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और शानवाज जी लेते हैं फिल्म सूरज का ये बहुत ही ओल्ड गोल्डन गाना है, मजा आ गया। अगला जो गीत है वो गीता शरण जी का है, ये सुनना चाहते हैं कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक आए हैं। निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं निशांत राय बोले जी। जागर जी लेते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, मोहम्मद रफी की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, एक्सीलेंट सॉन्ग सुना। और शनवाज जी लिखते हैं कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, ये गाना फिल्म में ये तीन बार आया है और तीनों बार अलग अलग यानी के कलाकारों ने गाया है, मोहम्मद रफी, मनहर उदास और हेम लता ने बहुत ही शानदार गाना गाया है, मजेदार फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1981 के पैदान नंबर 23 पर बजने वाला ये गाना और इस गीत में के तीन गायक ने अलग अलग वर्जन में गाए थे, मोहम्मद रफी, मनहर उदास और हेमलता, और निदा फाजली के बोल और संगीत उषा खन्ना जी का था। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच इतने प्यारे जानकारी के लिए। और नंदलाल जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। बहुत लाजवाब गाना, बहुत बेस्ट, पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और आरिफ सिंधे जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी डिमांड है सुनाने के लिए, बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड है मनीषा शर्मा जी का है और ये तो मेरी पसंद का गाना लेके आई है, धन्यवाद देते हैं, एंजॉय कीजिए इस गाने को फिल्म।

वेलकम बैक। और मेरे पास यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं, वेरी वेरी वेरी थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि आज तो रेडियो सेट छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है, ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनने का आनंद ही कुछ अलग होता है क्योंकि बहुत ही आनंद आ रहा है और पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि जब तक रहे तन्मय जिया, गाना बहुत ही बेमिसाल है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और किशोर पाल जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना चल रहा है अमन जी, मजा आ रहा है सुनकर। शनवाज जी लिखते हैं कि लाजवाब एंड सुपरहिट ये फिल्म समाधि का गाना सुनने को मिला है, थैंक यू सो मच मनीषा शर्मा जी। अगला जो डिमांड है हमारे रवि मोहरे जी का है और ये हमेशा हर यानी कि सोमवार को ये गाना जरूर लेके आते हैं और ये गाना तो मेरे भी पसंद का है, यानी किस्मत में लिखी कोई

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत फिर देगा जो संजय पटेल जी देखते हैं, मजा ही आ गया गाना सुन के। और ये क्या कहते हैं प्रियंका जी सुनते हैं
1: जब तक रहे।
0: अच्छा

0: अमन जी, ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा था। और आपने जो दूसरा सॉन्ग सुनाया था कि मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, हो गई प्यारे की हर तमन्ना तमन्ना जवा, ये दोनों सॉन्ग ही बहुत ही प्यारे थे। थैंक यू इतने अच्छे सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मनीषा शर्मा लिखते हैं सुपर सॉन्ग है जी, बिल्कुल ये तो गाना सुपर है ही। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि रवि मुखर्जी की पसंद, वह क्या गाना है, अंदर तक हिला कर रख देता है, बहुत ही शानदार गाना, दिल को छूने वाली। दीवान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लगातार दो हफ्तों से इस ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम में बज रहा है, दो हफ्तों से नहीं हर हफ्ते बजता है जी। वैसे यहाँ पे हमें नंदनी मालिक लिखते हैं कि गाना सच में बहुत ही प्यारा है, शानदार है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, ये गाना और इन किस्मत की लकीरों में ये वाला गाना भी बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम, बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला। जागृत जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं, ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम फिल्म यानी कि त्रिवेणी का गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और सौरभ कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। ओके, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला, अच्छा ये फीडबैक पर सुन लेता हूँ।
2: आरजे अमन सर जी, रवि मुहाल जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, उनको भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: ओके जी, वेलकम है जी। और अगला जो डिमांड, देखता हूँ इनका डाउनलोड हुआ है कि नहीं। ओके, देखता हूँ। तो ये है अगला जो डिमांड है हमारे, यानी कि प्रमोद कुमार जी का है, ये सुनना चाहते हैं ये गाना, लेकिन इनका गाना डाउनलोड होकर भी डाउनलोड नहीं हुआ। माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है। नो प्रॉब्लम, फिर से दोबारा मैं कोशिश करता हूँ इसको डाउनलोड करने के लिए। और प्रमोद जी, आई होप कि अब आपका गाना डाउनलोड हो जाए। मैं भी, हाँ हो गया, इन्जॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे अजय खुशी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: ये समाधि फिल्म का गाना भी बढ़िया था जी। और समाधि फिल्म आपने देख रखी है जी?
0: नहीं देखी,
1: देखी तो देखिए जी, आपने मजा ही आ जाएगा।
0: अच्छा,
1: और सभी सॉन्ग मजेदार।
0: अरे क्या करूं भाई, इतना बिजी रहता हूं कि कोई फिल्म देखने का समय नहीं है मेरे पास, क्या करूं मैं। ये फीडबैक
2: अमन सर जी, आज तो हम सॉन्ग से ज़्यादा फीडबैक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं सर।
0: अच्छा।
2: क्योंकि सभी श्रोता एक से बढ़कर एक लाइव करते हैं, शुक्रिया। मैं आत्मा पाटिल, थैंक यू।
0: ओके जी, और यहाँ पे सरोज भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: जय अमन सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, और यहाँ पे काजल झका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है काजल झका जी आपका। और अशोक कुमार लिखते हैं कि भाई भैया प्रमोद जी की पसंद बेहतरीन, सुनकर मजा आ गया है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और ओके, और भाई स्वरूप कुमार जी देखिए, आज यानी कि चांद तारों में नजर आया चेहरा तेरा नहीं प्ले होने वाला है, क्योंकि ये आज ओल्ड इज गोल्ड का प्रोग्राम चल रहा है, इसको यानी कल भेजिएगा। ओके, मनीषा जी लिखते हैं कि सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं और मजा आ रहा है सुन सुन के। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके जी, और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि मेरे दिल ने तुझे चाहा, सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब गाना लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर रवि महाराज जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और अगला जो डिमांड है वो यानी कि कायनात जी का है, ये सुनना चाहती हैं, जाने दो मुझे जाना है, कहाँ जाना है। और ये स्पेशली डेडिकेट है एम एन ताहिर जी को। एम ताहिर जी, स्पेशली डेडिकेट आपके लिए ये गाना आया हुआ है, तो कुछ जरूर फीडबैक दीजिएगा।

0: समझ गए एम ताहिर जी हैं। ओके, फिलहाल मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं बहुत सारे, और ये फीडबैक।
1: अमन सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते, नमस्ते।
1: कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहे ये होस्ट चार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: ओके जी, और यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का, और जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गाना, लाजवाब गाना चल रहा है, और ये फीडबैक सुनते हैं। लेकिन थोड़ा सा गाना

0: और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: ओ ना ना ना जाने दो मुझे जाना है।
0: अच्छा।
1: अरे वादा जो किया है वो निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी,
0: कौन है वो?
1: मेरी जान।

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू।
1: ओके जी, और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि जाने दो मुझे जाना है, वो एम ताहिर जी हैं। जी बिल्कुल, गाना बहुत लाजवाब लगा है जी, आपने सही कहा, मैंने भी वही कह दिया था। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि 1987 के पैदान नंबर 16 पर मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज में गाया हुआ ये गीत, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत अमर उत्पल का था। ओके जी, थैंक यू सो मच जानकारी के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड गाना सुपर से ऊपर लगा है, और एम ताहिर जी का फीडबैक ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिखते हैं कि कायनात जी की पसंद दिलकश लगी, और अच्छा आपकी पसंद के साथ नहीं, अभी आपके पसंद में आने में समय लगेगा बहुत ज़्यादा। और आपका कौन सा गाना है जी, बहुत समय लग जाएगा इस गाने के लिए। और यहाँ पे स्वरूप जी लिखते हैं कि ओके, और यहाँ पे यानी विजय राज जी लिखते हैं कि सर जी नमस्कार, हम भी आ गए हैं और साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है आपके लिए। एक यानी कि लाइन है, हम ये लिखते हैं कि हम भी जाने जाने मन के तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे। अच्छा, लिखते हैं कि हम भी जाने मन तेरे लिए एक ताजमहल बनाएंगे, अर्ज किया है कि हम भी जाने मन इन तेरे लिए एक ताजमहल बनाएंगे और एक कप सुबह पिलाएंगे और एक कप शाम पिलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये फीडबैक सुनते हैं।
2: मैंने तो प्रियंका का फीडबैक मजेदार लगा जी।
1: अच्छा,
2: धन्यवाद,
1: क्या बात है जी। हाँ, वो यानी कि बहुत अच्छा फीडबैक देती है ये फीडबैक।
3: सर्व कार्यक्रम अतिशय उत्कृष्ट अशा क्वालिटीची चालू आहे सर। मी आत्माराम पाटील रेडिओ हॉटस्टारवर सर्वांना सांगेन, ऐकत रहा अमन सर सोबत रेडिओ हॉटस्टारचे कार्यक्रम, जो सर्वांना दिवाना।
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद आत्माराम पाटील जी। ओके, और अगला जो डिमांड है वो हमारे विकास यानी कि गडकरी जी का है, और विकास यानी गडकरी जी के साथ साथ है निशांत राय बोले जी। निशांत राय बोले जी का गाना अकेले हो सकता है? इम्पॉसिबल, जब भी आते हैं वो किसी के गाने को कॉपी पेस्ट करके आते हैं। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए।
4: Wait, wait, wait! You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. What?
5: My name is Anthony Gonsalves.
6: Gonsalves?
5: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
3: और मैंने भी किसी से एड्रेस पूछा था तो मुझे यही एड्रेस मिला था। यानी कि रूप महल, यानी खुली नंबर 420।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.
2: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं और अजय कुछ लिखते हैं कि हिट सॉन्ग सुनने को मिल लगा है। गजन अंजलि लिखते हैं दोस्त रवि मार्जी का अभी गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं और फीडबैक सुनते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। मैं रवि मोहाड़े बैतूल मध्य प्रदेश।
2: ओके जी, और

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी
2: प्लीज, वैसे फीडबैक और भी है मेरे पास। यहाँ पे अशोक कुमार जी लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन पर फिल्म आई, शानदार गाना फिल्म अमर अकबर एंथोनी का, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विकास गडकरी जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, और प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि मैंने अभी एंथोनी गोंजाल्वेज गाना सभी एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, मजा आ रहा है सुन के। और यहाँ पे लिखते हैं एम ताहिर जी के, यानी कि मत में निकी कायनात जी के लिए, जाने दो गाने पर कुछ अल्फाज अमन जी, जाने दो यानी कि कहकर तुम यू बात पुरानी बनाती हो। अच्छा, ये लिखते हैं कि जाने दो कह के तुम यूं बात कुछ पुरानी बनाती हो, और कायनात तो सवर जाती है मेरी जब तुम यूं मुस्कुराती हो, और इश्क में तेरा जाने दो कहना मुझे भी एक यानी प्यारा सा बहाना है, और कायनात का ये सबसे हंसी मंजर बस यानी तेरे संग वक्त बिताना है, और तुम जाने दो कहकर हर वक्त हर बात को टाल देती हो, अपनी सादगी से तुम यूं ही पूरी कायनात संभाल लेती हो। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहा है आपने। जितेंद्र जी लेते हैं कि बहुत बेहतरीन फरमाइश लगी है, मजा आ गया सुन के। और विष्णु चंद्र जी लेते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड गाना बहुत जबरदस्त लगा है। गजानंद जी लिखते हैं कि माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्वेज, ये गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं किशोर कुमार की आवाज में। और निशांत बोले जी लिखते हैं मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। ओके जी, और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे शाहनवाज खान जी का है, सुना चाहते हैं।
3: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम।
2: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे यानी मीना कुमारी जी लिखती हैं कि बहुत ही प्यारी सॉन्ग इनकी डिमांड है और अच्छा लग रहा है। ओके जी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि शाहनवाज जी की पसंद शानदार, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं औसम सॉन्ग के लिए। और स्वरूप कुमार जी, अरे भाई ये आपका उधर भेज दीजिए और वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ भूल जाऊँगा ये फीडबैक।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: कह दीजिए।
1: मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, तुम, तुम, तुम, तुम। अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से

0: कोई लड़का, हाथ से कोई लड़की, इसे हाल में। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू।
1: ओके जी, और अशोक कुमार जी लेते हैं बॉबी का सुपरहिट गीत, सुनने में मजा आ गया। ओके जी, और विकास गदकर जी लेते हैं अक्सर कोई लड़की, सुपरहिट सॉन्ग है। और विष्णु चंद्र जी लेते हैं कि सुंदर गाना चल रहा है। अच्छा जी, शाहनवाज जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, अमन सर जी आपने मेरा डिमांड को प्ले कर दिया है, और सभी दोस्तों का भी शुक्रिया और फीडबैक देने के लिए। मैं शाहनवाज खान हैदराबाद से, और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय शाहनवाज जी की पसंद मुझे पसंद आई, बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, और लिखते हैं ओके, अगला जो डिमांड मैं इन प्ले करने वाला हूँ वो है शाहिद अंसारी जी का। शाहिद अंसारी जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और भाई यानी स्वरूप कुमार जी आपके लाल किले होने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है फिलहाल। ये फिर
1: जय अमां सर जी, शाही अंसारी जी अपने गाने में शामिल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे आत्मानंद जी रहते हैं कि बॉबी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और फिर भी
2: सुरीले गानों का होता है संगम, जब बजे रेडियो स्टार और सुने आप और हम, धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे सोनू गौतम जी रहते हैं कि यारो अब क्या होगा, ये गाना सच में बहुत ही बेहतरीन लगा, लाजवाब लगा है। अगला जो डिमांड है सर्वेश भगत जी, आत्माराम जी और अशोक देशमुख जी का, तो सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए। अशोक देशमुख जी।
3: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
3: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
3: आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है पिया का घर और गाने का बोल है, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है।
0: हाय हाय हाय, क्या गाना।
3: ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
4: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
4: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है पिया का घर और गाने का बोला ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिनकी तस्वीर ऐसी है।
0: हाँ,
4: हाँ, स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत जंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, सुनी कुमारी, मोहन कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, संतोष कुमार जी, मुन्ना जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आरजे वंशिका जी, आरजे कांछा जी, आरजे एमएस परमार जी, आरजे आदित्य जी, आरजे सोनी जी, आरजे रत्ना जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जय राम जी के अमन सर।
0: ओके जी, और इसी में आत्माराम जी है।
5: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार जी। मैं आत्माराम पाटिल ग्राम लिहा तहसील मलकापुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉटस्टार में ओल्ड इज गोल्ड में एक मूवी लेकर आया हूँ सर। मूवी का नाम है पिया का घर, वैसे सिंगर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी और आर्टिस्ट है सर अनिल धवन और जया बच्चन जी, और इस गीत को म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी ने और गीत बनाया आनंद बख्शी जी ने, और गीत के बोल कुछ इस प्रकार के हैं सर। ए जुल्फे कैसी है जंजीर जैसी है, ओ कैसी होती है जिसकी तस्वीर ऐसी होती है। तो मुझे लगता है यह गाना सबसे ओल्ड होने के कारण सभी को बिल्कुल पसंद आएगा, और यह गीत मैं सबसे पहले आपको, आपकी सुंदरता की मूरत को और हमारे साथी दोस्त है अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, सैयद उनी जी है, दत्ता कदम जी है, गजानन गुरपुरा सालोकार, फुले भक्त संजीव बहू और जितने भी आरजे है हमारी बहना, सभी को आज का गीत और उनके साथ साथ हॉटस्टार वाले सभी

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक है माय गॉड, सच में बहुत ज्यादा। पहला तो इसी को सुनेंगे।
1: अरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा और अशोक देशमुख जी का, अतवारा पाटी जी का, तीनों भाई का पसंद अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर्विस भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी के पसंद सुपर से ऊपर है, लाजवाब है। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि ये पिया का घर का गाना सच में बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, सभी को थैंक यू सो मच। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि हाँ बहुत जल्दी आने वाला है। और भगत जनन जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी सर्विस भगत जी, आत्माराम जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की मिली जुली डिमांड लाजवाब लगी है, धन्यवाद। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की पसंद अपने आप में बेमिसाल है, ओके। और नंदलाल जी लिखते हैं कि सर्विस भगत जी के ये ग्रुप का जो डिमांड है बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं सभी को। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। निमोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: ओके जी, अभी और फीडबैक्स बाकी हैं। और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि ये पिया का घर का सुपरहिट लाजवाब गीत जो मुझे भी बेहद पसंद है और सुनने में मजा आ गया सर, दोस्तों की बेहतरीन पसंद। ये लिखते हैं कि अनिल धवन और ये जया भादुरी पर फिल्माया हुआ शानदार गीत, हम मध्यवर्गीय परिवार और घर पर वो कटाक्ष करता हुआ लाजवाब फिल्म था। ओ मैंने नहीं देखा है लेकिन आपने बता दिया तो कहानी समझ में आ गई बिल्कुल। और संदीप सुतार जी लिखते हैं कि अभी तक मेरा सर देखिए ये सब शिकायतें आप लोग प्लीज़ इन मत किया कीजिए, क्योंकि वो कब कौन सा गाना यानी कि प्ले होगा मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है। चाहे आप चाहे वो गाना अभी भेजिए, चाहे आप इन्हें पहले भेजिए, नो प्रॉब्लम, जो गाना जहाँ प्ले होने वाला होगा ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये फिर
3: अशोक देशमुख जी, सर्वेस भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, हमारे तीनों दोस्तों की पसंद बहुत ही शानदार लाजवाब सुनवाने के लिए शुक्रिया। और आरजे अमन सर जी आपने प्ले करके हमको सुनवाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी तमिलनाडु चेन्नई से सुन रहा हूँ, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद है आपका। और यहाँ पे मनीषा शर्मा जी लिखते हैं बेहतरीन सॉन्ग चल रहा है, ओके जी। अभी और भी आने वाला है बेहतरीन। मीना कुमारी जी लिखते हैं कि बिल्कुल ये गाना अच्छा लगा, ओके। और ये फीडबैक सुनते हैं।
4: थैंक यू अमन सर जी, आपने हमारे चारों भाई का फरमाइश चला दिया,
0: तीनों भाई का
4: शुक्रिया सभी को। मैं आत्माराम पटेल महाराष्ट्र से।
0: ओके जी, अजय कुछ जी लेते हैं कि ये बहुत ही मनमोहक गीत था, मजा आ गया सुन के। जितेंद्र जी लेते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राजीव तिवारी जी क्या कहते हैं?
5: हाय यार जी, अमन सर जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
0: अच्छे, आप बताइए।
5: आज मुझे कोल्ड इज कोल्ड में
0: गाने का बोल लिख कर मुझे भेज दीजिए वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट में। मनीषा जी लिखते हैं कि ओके। और विष्णु चंद्र जी लेते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना था। अगला जो डिमांड है वो यानी किशन पाल शाक्य जी का है, सुनना चाहते हैं ये रेशमी जुल्फें ये शरबतिया।

0: अमन भाई बहुत ही लाजवाब सॉन्ग लगा और पसंद करता को दिल से धन्यवाद।
1: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि किशोर पाल शाक्य जी के प्रश्न मुझे बहुत अच्छी लगी है, और शाहनवाज जी लिखते हैं कि ये तो बात सच है, ये रेशमी जुल्फ है, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, बहुत उमदा और लाजवाब बेहतरीन ये नगमा है, मजा आ गया सुन के। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किशोर पाल जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने दोस्तों ने गाने को पसंद किया फीडबैक दिया उनको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके जी, और अशोक कुमार लिखते हैं कि दो रास्ते का शानदार गीत सुनने में मजा आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्म आया हुआ गीत सुनने में, और जितेंद्र जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग चल रहा। अगला जो डिमांड है वो हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का है, सुनिए।
2: नमस्कार अमन जी, कैसे हैं आप? सभी रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मेरे आज जो गाना है वो गाने के बोल हैं रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। तो मेरे हुजूर अमन जी सुना दीजिए ये गाना। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सीढ़ी मालवा से, धन्यवाद।

वेलकम है को रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि दीपक कुमार गायकवाड़ जी की पसंद बेहद ही लगी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि मेरे हुजूर का गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि मेरे हुजूर का गाना, क्या बात है, रियल ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनने का इन मजा ही कुछ और है। जी बिल्कुल। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है प्ले वो है, यानी कि मनीषा जी का डिमांड है। और ये सुनना चाहती हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हटिया जो दीवाना बना दे और अशोक कुमार जी देते हैं कि मेरे हुजूर क्या गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और राजीव त्रिवेदी जी लिखते हैं कि बहुत ही दमदार सॉन्ग है, मनीषा जी धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। राधा कृष्ण को भी लिखते हैं मनीषा जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और ये फिर
1: धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, कोई सुना ले, हमको किसी का डर नहीं, अच्छा। कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले, कोई सुना ले।
2: वाह, बहुत लाजवाब गाना, पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और शाहनवाज जी देते हैं कि एक और सुपरहिट सॉन्ग सुनने को मिला और गोरा और काला का लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, गोरा और काला का बहुत ही शानदार गाना। और ये फिर में
3: अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, सबको सुनाने के लिए और फीडबैक देने वालों का बहुत बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और अशोक कुमार जी देखते 973 के पैदान नंबर 17 पर बया था सर, मुकेश और लता की आवाज में और आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत ये प्यार लगा संगीत था। अगला जो डिमांड है वो हमारे एम एन ताहिर जी का और स्पेशली डेडिकेट है यानी मैजिकल गर्ल यानी कायनात जी को। ओके तो सुनवा दिए, एंजॉय कीजिए इस गाने का।

और अगला जो डिमांड है मेरे पास है, लेकिन फीडबैक पहले अजय कुछ नहीं देते। नंदलाल जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया उनका फीडबैक सुनकर। और विष्णु चंद्र जी देते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। मनीषा जी देते हैं धीरे धीरे बोल कोई सुनना नहीं, थैंक यू सो मच आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और सोनू गौतम जी देते हैं कि ये रात है प्यासी पासी, अमृत अहर जी के पसंद एकदम लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं। और विजय कुमार लिखते हैं कि नमस्ते अमन जी, मैं भी जुड़ गया हूँ। अगला जो डिमांड है हमारे वो संदीप सुतार जी का, संदीप सुतार जी सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: ओके जी, और अगला जो डिमांड में यानी कि विष्णु जी का प्ले करने वाला उनके फिलहाल फीडबैक है राजीव त्रिवेदी लेते हैं कि आज का प्रोग्राम वर्ल्ड इज गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और गजानन जी लेते हैं संदीप सुधा जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है, और विष्णु चंद्र जी लेते हैं वर्ल्ड इज गोल्ड बहुत ही प्यारा गाना है और ये फीडबैक।
1: आर जे अमा सर जी, संदीप सुतार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी, और एम ताही जी देखेंगे, अमन सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। और राधा कृष्ण को भी देखेंगे, संदीप सुधा जी की जो डिमांड है बहुत ही पसंद आई है। अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि विष्णु चंद्र जी का है, वो सुनना चाहते हैं मैं तेरा हो गया तू मेरी हो गई। इंजॉय कीजिए इस गाने के लिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जी। और देखते हैं कि हम एक गजल अंजलि देते हैं कि मैं तेरा हो गया वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड है हमारे वो गजल अंजलि का ग्रुप का है, उसमें शामिल हो रहे हैं मिशाल अंगद जी। और मिशाल अंगद जी के साथ देखना पड़ेगा कि और कौन कौन से दोस्त शामिल हैं। तो ये सुनना चाहते हैं यानी कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाह दीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बंदा अस्मिता गोपी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। राजीव त्रिवेदी देते हैं कि ग्रुप के दोस्तों की डिमांड बहुत ही पहले लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी देते हैं कि 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम, बहुत अच्छा गाना लग रहा है। ओके, अगला जो डिमांड है राजीव जी का
1: कहते
0: हैं, सुनते हैं।
1: हाँ यार, ये अमन सर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आज मुझे ओल्ड इज गोल्ड में सॉन्ग सुनवा दीजिए। तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता, मैं क्या करूं, फिल्म का नाम कब्जा, और ये सॉन्ग आपको और सभी सुनने वालों को।

Welcome back on Radio Hot Star. Jyoti Bana Bana. From a quality respected, respected in Kajal and Sulkar Ji's group's demand. अच्छी लगी है धन्यवाद देते हैं राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है और गजन जी लिखते हैं कि आदरणीय अमर जी को प्यार नमस्कार सभी साथियों गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट ओल्ड इज गोल्ड। अगला जो डिमांड है वो हमारे विभूति भूषण शरण जी का है, वो सुनना चाहते हैं देखा एक खाब तो

0: यह कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक है मेरे पास। गजन अंजलि लेते हैं कि देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, गाना सच में बहुत ही प्यार लगा सिलसिला फिल्म का। और राजीव तिवारी जी क्या कहते हैं?
1: धन्यवाद अमन जी मेरा सॉन्ग सुनवाने के लिए तहे दिल से, और सभी श्रोता लोगों का भी।
0: और यहाँ पे विष्णुचंद जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड सुपर हिट गाना लग रहा है। मनीषा जी लिखते हैं कि चश्मी ये गाना बहुत ही पसंद आता है मुझे। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, अगला जो डिमांड है मैं कौन सा प्ले कर दूँ। चलिए, यानी कि पूजा भास्कर जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, तो और इन्जॉय कीजिए पूजा भास्कर जी।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास फीडबैक है, रजित वैजी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी की डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आई है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड सुपर हिट गाना। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ किनका है भाई? वैसे तो आज के सभी गाने मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, लेकिन अब मैं कब सैड सॉन्ग सुनाऊंगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले कर रहा हूँ वो यानी कि होठों से छू लो तुम, यानी गुड्डू कुमार जी का है, जो सुनना चाहते हैं सीतामढ़ी बिहार से। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: संगीत
1: बिल्कुल संगीत अमर कर दो। और गजानन जी लिखते हैं कि फोटो से छूलो तुम गीत अमर कर दो, गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। राजीव जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग है भाई, यानी गुड्डू जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। और यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि एक नंबर गाना चल रहा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। दीपक मैं गायकवाड़ जी क्या कहते हैं जरा इनकी सुन लेते हैं।

0: अमन जी, ओल्ड इज गोल्ड गाने सुनते सुनते मैं एक सुनसान रास्ते से जा रहा था और आपके गाने इतने बढ़िया चल रहे थे कि मुझे पीछे से आवाज़ आई, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मेरी चलने की स्पीड बहुत तेज़ हो गई और मैं घर आके सोचने लगा कि अमन जी के गाने सबको बहुत पसंद आते हैं। भाई बहुत बढ़िया, आज तो मैं बच गया आपके गानों की वजह से। धन्यवाद, मैं दीपक अकवर सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
1: अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा, यानी विजय कुमार जी का। सुनना चाहते हैं राम तेरी गंगा मैली का, बहुत ही प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए।

पर कभी कभी रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं और मीना कुमारी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है। गजान अंजलि लिखते हैं कि तुझे बुलाए मेरी बाहें, लता मंगेशकर की आवाज़ में राम तेरी गंगा मैली का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि सुपर हिट गाना है राम तेरी गंगा मैली का। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूँगा वो नवेद जी का, वो सुनना चाहते हैं फिल्म साजन की सहेली का, ये बहुत ही प्यारा गाना जो मुझे भी बहुत पसंद है, तो सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और फिर बैक में पता शिल्पा भी लिखते हैं कि सभी बैक टू बैक गाने लाजवाब चल रहे हैं, मजा आ रहा है सुन के। मीना जी लिखते हैं कि जिसके लिए सबको छोड़ा गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और राजीव तिवारी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी ये पसंद है साजन की सहेली वाला, मजा गया। और गाना सुन के विष्णु जी लिखते हैं कि गाना जबरदस्त है एकदम मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि सुपरहिट लाजवाब डिमांड है। और हमारे विकास अधिकारी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना, ओके धन्यवाद। इसी बात वगैरह जो डिमांड है मुरादाबाद यूपी से सुनना चाहते हैं बेवफा ये गाना।

0: कहाँ जा रहे हो?
1: टीवी बंद करने, कुछ बातें करते हैं।
0: बैठो ना, कितना अच्छा गाना है। मैं भी ये गाना याद कर लेता हूँ। अगर तुम कहीं गई ना तो मैं भी एक

और फीडबैक मेरे पास आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ है और सभी के गाने एक से बढ़कर एक फले हुए हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मीना जी लिखते हैं गाना बहुत ही सुपर हिट लगा है, धन्यवाद। और राजीव त्रिवेदी जी लिखते हैं कि सारे गाने सुपर सुपर सुपर चल रहे हैं। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं थैंक यू सो मच जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि शिल्पा बहन जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद उनको। और विष्णुचंद्र जी लिखते हैं गाना सच में बहुत ही प्यारा है। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि मेरे हम सफर वाकई दिल को छूने वाला गीत है, धन्यवाद देते हैं इस गीत के लिए। और विकास गारी के लिए चलते हैं कि लता जी की आवाज़ में वो जवाब ही नहीं, सुपरहिट गाना है। और अगला जो डिमांड है अब्दुल जब्बार जी की पसंद है वो सुनना चाहते हैं परदेशियों से अकेला मिलाना। ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को। अब्दुल जब्बार अंसारी जी।

वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और यहाँ पे शनवा जी देते हैं जब जब फूल खिलेगा गाना बहुत ही शानदार लाजवाब लगा है और आशीर्वाद बहन जी देते हैं कि ये परदेशों से अखेरा मिलाना गाना बहुत अच्छा लगा है। नंदलाल जी देते हैं बहुत ही लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और विष्णु चंद्र जी देते हैं बहुत ही प्यारा गाना है। अगला गाना इसी बात पर सुनाते हैं हम आपको नंदलाल जी के पसंद। इंजॉय कीजिए नंदलाल जी।

आज मत होया कीजिए। वैसे समय थोड़ा सा मैंने यानी क्योंकि ऐसा कोई कोई गाना रहता है उसको मैं यानी कि पूरा प्ले करता हूँ, लेकिन ज्यादातर गाना मैं आधा ही प्ले करता हूँ क्योंकि गाने की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। उसके लिए हम सॉरी, कोशिश करूंगा आपके गाने

0: और ये गाना था करीब 8 मिनट यानी 9 सेकंड का, लेकिन मैंने प्ले किया यानी कि 4 मिनट के आसपास। ओके, तो होता है ना, हर गाने को पूरा प्ले नहीं कर सकते हैं। गजानन जी लेते हैं कि पर्दे से खेना मिलाना, गाना बहुत ही प्यारा लगा है, और मीना जी लेते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, ओके मैंने पहली बार सुना है, और नंदलाल जी लेते हैं कि सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शनवाद जी लेते हैं कि अपना खून फिल्म का बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। अगला जो डिमांड है हमारे आरिफ सिंधी जी का है।
1: अस्सलामु अलैकुम आर जी अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी आज के गाने के बोल रहेंगे। घोड़ी पे हो के सवार चलाए दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार, मिली है ऐसी लेला अकड़ता है छेला के घोड़ी है नहले पे दहला। फिल्म का नाम है गुलाम बेगम बादशाह, आवाज़ें दी है मोहम्मद रफ़ी साहब जी ने। डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर जी आपको, आपकी सुंदरता की मूरत जी को, आरजे वंशिका जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे आकंसा जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे आदिति जी को, और रेडियो हॉट स्टार के सभी दोस्तों को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार ज्योति वाला बना। और अजय कुछ नहीं देखें मेरा भाई, आपका डिमांड कहाँ आया हुआ है, आपने भेजा ही नहीं है। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि आदि सुनील जी की पसंद मुझे पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और आदित्य जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना तो नंबर वन लगा है। अगला जो डिमांड है वो महेश भाई का है। महेश भाई ये सुनना चाहते हैं फिरकी वाली तो कल फिर आना, इंजॉय कीजिए। गलती गाना प्ले कर दिया है।

0: आना।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और गजानंजलि आदरणीय अमन जी, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ, धन्यवाद देते हैं आपको। और विकास गदकरी लिखते हैं कि सुपरहिट गाना है, मजा आ गया सुन के। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना। और आज का सबसे आखिरी गाना जो मैंने कहा था कि मैं प्ले करूंगा आमना जी का, बाकी गाने को मैंने कर दिया है रिजेक्ट। आखिरी गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आमना खान जी की पसंद का, ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ये लीजिए
0: मेरे लिए।
1: ये आपकी नजर।

0: नजर न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।